हंसाती नहीं अच्छा लगे जैसा कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए ना मस्तानी।

आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ हाँ बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आप कभी आए तो बात बन जाए, हाँ हाँ बात बन जाए, हाँ आप जैसा।

0: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छुपकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
1: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जी

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पसीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,